उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको, इसे बताते ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

ऐ प्राणी, संसार में सुख दुख, भाव अभाव, होना ना होना, लाभ हानि और जीवन मरण, ये सब सभी प्राणियों को बारी बारी से प्राप्त होते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारी सुबह शाम की पूजा तभी स्वीकार करता हूँ जब तुम्हारे दिन के काम काज में एक भी झूठ नहीं होता।

कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है। उजाला रेडियो है, ये सुनो वालों, मैं हूं अमित जयराम। जो भी आप इस वक्त कर रहे हैं, जहां आप मुझे सुन रहे हैं, याद रखिए उजाला रेडियो मेक्स एवरीथिंग बेटर। एंड सो इज अतोख एट फिल्म फैशन वाज गाना नेहा भासीन एंड मोहित चौहान, और ये है मिथुन एंड अरिजीत सिंह एट फिल्म कबीर सिंह।

हाँ मैं जितनी मर्तबा तुझे हूँ देखता ये लगता है मुझे हेलक का गाना फिल्म का नाम है ऑल द बेस्ट और आवाज है के जशीता गोपाल इन दिस हेलक फील गुड गाना एंड यू हर्ड हिम हियर बाय उजाला रेडियो द बिगेस्ट हिंदुस्तानी मिक्स दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी रेडियो हैज़ टू बी उजाला रेडियो मैं हूँ अमी जयराम एंड लातु गनीते फॉर हेलक गफारीद गाना The same from KK, samen met Shreya Ghoshal uit de film Hum, Doom or Ghost. Organica naam hai, Dekho Raste Mein.

देखो रस्ते में हंसते हंसते में बात पहुंचे कहां से कहां, या इस खबर अख्तर फिल्म हम तुम और गोस्ट, आवाज है के और श्रेया घोषाल। या आई होप यू एंजॉय द गाना। आज हम पेश करेंगे गवारियर्ड गाना उजाला रेडियो, कीपिंग यू ऑन द मूव विथ योर बेस्ट फ्रेंड अमित जयराम।

सर आंखों पे नजरे गिराना तेरा, ओ बिजुरिया। गाना का नाम है ओ गुजरिया, है क्या इरादा तेरा। फिल्म का नाम है क्वीन और आवाज है शेफाली अल्फारिस और निखिल डिसूजा। हिलके हिलके गफरियत गाना जो इस वक्त काम पे है। आई होप यू एंजॉय द गाना। उजाला रेडियो 24/7, waar je ook bent, op elk moment heerlijke entertainment. Ja toch, de biggest Hindustani mix. I love my Ujala. और ये है अभिजीत सामा में श्रेया घोषाल। फिल्म का नाम है बेशरम और गाना का नाम है दिल का जो हाल है।

इतना करो ना मुझसे प्यार, ओ साथिया ये तूने क्या किया। एस चित्रा एंड एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मोहम्मद अजीज एंड साधना सरगम हिस्सा लेंगे। आपके आ जाने से हाँ

और सच मानिए कि दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। फिल्म खुद गर्ज का गीत आप सुने मोहम्मद अजीज एंड साधना सरगम से। ये उजाला रेडियो है।

अब तू हाँ कर या ना कर, या ना अब तो तू है मेरी किरण। फिल्म धड़का गीत, उदित नारायण की आवाज।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनवलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप हरे को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज की जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। हमारे प्यार सुनवालो, मैं हूँ सुभाष और जहाँ तक ये आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूँ। चाहे जहां पर आप लोग युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम को सुनते होंगे, वेलकम। उजाला रेडियो का दफ्तर का फोन का नंबर है 9 3 9 9 9 7 पर आप लोग तार कर सके हैं और हमारा कंतोर खुला रहता है फन मान दख तो तुम्हें 7 फन 3 सुमार द्री इन द मिदाख सोमवार से लेकर शनिवार 10 सुबह से लेकर शाम में 3 तक। और हमारा वेबसाइट का पता है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक इन्फो, हर एक जानकारी आपको मिलेगा।

और हमारे प्यारे सुनने लो, आज का प्रोग्राम में, आज का प्रोग्राम में कुछ ऐसा गीत हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। आशा है कि आज का प्रोग्राम भी आप लोग को पसंद आएगा। यू आर उजाला रेडियो है हमारे प्यारे सुनने वालों।

धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना और धीरे धीरे मेरे दिल को चुराना। अभी सरल सी गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। कभी कभी ऐसा होता है यार कि मैं ये दुनिया भुला दूंगा प्यार में यार।

तेरी चाहत में मैं सब कुछ लूटा दूंगा, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी तेरी चाहत की। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने कुमार सानू एंड अलका याग्निक जी के आवाज में, यू आर उजाला रेडियो है।

यार कितना मोय कितना बिजाल, बोले तू दे इजाजत तो बोले थोड़ा से तुझसे प्यार कर लूं। अदनान सामी जी के आवाज में

वेल वेल यार, तेरी मेरी एंड मेरी तेरी प्रेम कहानी। अब इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, कितना प्यार के साथ, कितना दुलार के साथ यार। यू आर उजाला रेडियो है।

वेल वेल यार, दीवारों पे वेल है नाम तेरा तेरा, इस तरह से हमेशा ऋषि मियां जी के वास में गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। वेल कहो ना प्यार है यार।

बल यार दिल दिल दिल बोले लगा लिया यार कितना मोह कितना पिसाल जे दिल लगा लिए कोई से ते ही प्यार है अलका याग्निकेन उर्जित नारायण जी के पास में गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों।

लो यार, तेरा तेरा नाम है तो क्या ये तो बता। एंड इस तरह से किशोर कुमार जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने।

वाओ वेल यार, दिल दिल मेरी ना सुने, दिल के मैं क्या करूं। अन्य तरह से आतिफ असलम जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे।

उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। सोनू निगम एंड सरिका कपूर से आप सुने फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। तुमसे अच्छा कौन है और ये उजाला रेडियो है।

जिंदगी बन गए हो तुम। फिल्म कसूर और गीत के गाने वाले अलका याग्निक और उदित नारायण जी।

मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

0: उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया
1: चिरैया hey!
2: उजाला रेडियो पर एक बार फिर आप सभी को स्वागत है और अब शुरू होता है यहीं से यादगार गीतों का।

तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों। तो डीजे आप फरमाइश अब उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर।
1: लौट के आया उड़ता पंछी, नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

पुण्य संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: आप चुन हैं उजाला रेडियो पर फाइव्स ऑन।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर ये शानदार सिनेमा जो कि पेश किया गया है. चेक फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन उजाला.nl, उजाला रेडियो, डीएबी प्लस पर हॉलैंड भर में.

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

थे गमी है पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम और बाकी नीदरलैंड से लड़कन मथुरा, लड़कन बेंदे श्री सिंह और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयंत अख्तियार औत लड़कन महेंद्र, राम, उर्मी, सुरेश, गीता, मुकेश, सुदेश और स्वर्गीय सुनील की माँ अनिल, गायत्री, शांता और अमीरा के सास, सभी लड़कन के नानी, आजी, परनानी और पर आजी, आम्स्टरडम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदे श्री सिंह की मृत्यु ओंजे लीफ ऑफ रावस्थाइस वेस्ट में हो गई है, जो कि स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा के विधवा थी। आम्स्टरडम और बाकी नीदरलैंड से लड़कन मथुरा, लड़कन बिंदे श्री सिंह और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयंत अख्तियार औत लड़कन महेंद्र, राम, उर्मी, सुरेश, गीता, मुकेश, सुदेश और स्वर्गीय सुनील के माँ अनिल, गायत्री, शांता और अमीरा के सास, सभी लड़कन के नानी, आजी, परनानी और पर आजी, आम्स्टरडम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदे श्री सिंह की मृत्यु ओंजे लीफ फ्रावस्थाइस वेस्ट में हो गई है, स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा के विधवा जो थी। अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार के दिन में 3 बजे मोरखन में दखद्री उर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेग 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अल्मेरा से ननद सीला मथुरा और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्तखियार और ननद सीला मथुरा के सबसे बड़ी भौजी स्वर्गीय ससुर श्री बड़का राम सेवक मथुरा और स्वर्गीय सास श्री जगदी मथुरा माता प्रसाद के सबसे बड़ी पतो सभी लड़कन के मामी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा वेलमा मथुरा बिंदे श्री सिंह की मृत्यु लीफ फ्रास्ट हाउस वेस्ट में हो गई है। अलमेर से ननद सीला मथुरा और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्तखियार और ननद सीला मथुरा के सबसे बड़ी भौजी स्वर्गीय ससुर श्री बड़का राम सेवक मथुरा और स्वर्गीय सास श्री जगदी मथुरा माता प्रसाद के सबसे बड़ी पतो सभी लड़कन के मामी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा वेलमा मथुरा बिंदे श्री सिंह की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार के दिन में 3 बजे मोरखन फ्रेदख मोरखन मेदख फ्रेदख द्री उर किए जाएंगे। वैसखांड क्रिमाटोरियम ओक मेरवैख 275 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। ये सूचना है कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग परिवार मथुरा और परिवार बिंदे श्री सिंह के दुख में शामिल है।

दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो और वो भी अमी जयराम के साथ ऑफ देश गवेल दाग हाउस फंदाग वेर ऑफ गेम वेर तू जाने हित हियर बाय उजाला रेडियो माकवा ऑल टाइम हियर लेके फंटास्टिसे स्वेरफुल स्वेर.

उजाला रेडियो डे अवे प्लेस पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो. और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए. तू जान है तो उजाला रेडियो.